0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार सखियो, मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी। सखियो, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे आस पास ही है, लेकिन हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे नजरअंदाज कर देते हैं, उसे देखना भूल जाते हैं। जी हाँ सखियों, मैं बात कर रही हूँ छोटी छोटी खुशियों की। सखियों, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। हम सब जिंदगी में किसी बहुत बड़ी खुशी का इंतजार क्यों करते रहते हैं? जैसे कि जब नई गाड़ी आएगी तब पार्टी करेंगे, जब बड़ा प्रमोशन मिलेगा तब हंसेंगे, या जब कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा तब खुश होंगे। सखियों, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चक्कर में हम उन छोटे छोटे पलों को भूल जाते हैं जो हर रोज हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जरा सोचिए सखियों, सुबह सुबह उस गर्म चाय की पहली चुस्की में जो सुकून है, वो किसी 5-स्टार होटल की कॉफी से कम है क्या? रास्ते में किसी अनजान बच्चे का आपको देख करके मुस्कुरा देना, पुरानी जीन्स की जेब से अचानक से सूखा नॉट मिल जाना, या फिर FM पर अपना पसंदीदा गाना बजने पर कार में ही झूम उठना, यही तो है वो असली खुशियाँ। ढूंढते फिरते हो जिन बड़ी बड़ी खुशियों को तुम, वो छिपी बैठी है तुम्हारी ही इन छोटी गलियों में। चलो आज फिर से मुस्कुराया जाए, बगैर किसी वजह के त्योहार मनाया जाए। बड़ी खुशियों की चाहत में वक्त ना गवाओ, इन छोटी छोटी खुशियों को ही गले लगाया जाए। जी हाँ, इन छोटी छोटी खुशियों को मिस मत कीजिए। आज घर जाते समय अपने परिवार के लिए उनकी पसंद की कोई चीज ले जाइए, या फिर किसी पुराने दोस्त को बिना किसी वजह के फोन मिलाइए, या बस आईने में देखकर खुद को एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए। सखियों, जो लोग छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना जानते हैं ना, वो बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी डटकर सामना कर लेते हैं। अगर हम इन छोटे छोटे पलों को जीना सीख लेना सखियों, तो जिंदगी का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। बड़ी खुशियां हमें कामयाबी का एहसास कराती है, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां हमें जीना सिखाती है। तो सखियों, देर किस बात की, आज ही से अपने आसपास की इन छोटी छोटी खुशियों को समेटना शुरू कीजिए, क्योंकि असल में यही खुशियां मिलकर हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। खुशियां बिखरी है जमाने में, समेटने वाला चाहिए। जिंदगी बेहद खूबसूरत है सखियों, बस देखने का नजरिया चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये खूबसूरत सा सफर।

सखियों, आज तारीख है 15 जुलाई 2026। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व युवा कौशल दिवस। सखियों, आज का दिन हमारे देश की उस सबसे बड़ी पावर हाउस के नाम है जिसकी रगों में जोश है, आंखों में सपने हैं और हाथों में कुछ कर दिखाने का हुनर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की युवाओं की। सखियों, एक समय था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन साल 2026 का नया भारत कहता है पढ़ने लिखने के साथ जब सीखोगे कोई हुनर तभी तो बदलेगी आपकी और देश की तकदीर। सखियों, आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक डिग्री का होना काफी नहीं है। आज बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं बल्कि स्किल यानी कौशल की है। चाहे वो कोडिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कोई पारंपरिक कला या तकनीकी काम, आपका हुनर ही आपकी असली पहचान है। सखियों, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को सही दिशा तभी मिलेगी जब हर हाथ में एक हुनर होगा। सरकार की स्किल इंडिया डिजिटल जैसी योजनाएं भी आज के युवाओं को नए जमाने के स्किल सिखाकर आत्मनिर्भर बना रही है। तो सखियों, आज खुद से एक वादा कीजिए, इस साल 2026 में कोई एक नया स्किल जरूर सीखिए, अपनी हॉबी को अपनी ताकत बनाइए। याद रखिए, डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती है लेकिन आपका हुनर आपको लीडर बना सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हुनर है तो कदर है वरना ये दुनिया बेअसर है। खोल दे पंख अपने, अब उड़ने का समय आया है।

सखियों, आज 15 जुलाई है, भारतीय इतिहास की एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सखियों, हम बात कर रहे हैं दुर्गाबाई देशमुख की। इनका जन्म हुआ था 1909 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। वो एक वीर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, बल्कि एक कुशल वकील, प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता और भारत की संविधान सभा की महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। सखियों, मात्र 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी कपड़ों का पूरी तरह बहिष्कार किया था। देश को आज़ाद कराने के लिए दुर्गाबाई देशमुख ने सखियों नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक देश का वास्तविक विकास होना बिल्कुल असंभव है। महिलाओं को समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने चेन्नई में आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जिसने हजारों महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर दिए। स्वतंत्रता के बाद वे केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी और देश के कोने कोने तक जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने पहुंचाया। भारत सरकार ने समाज के प्रति उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दुर्गाबाई देशमुख के जन्मदिवस पर हमारा उन्हें शत शत नमन। आइए इस विशेष दिन पर हम सब मिलकर उनके विचारों को अपनाएं और समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लें। इसी के साथ सखियों, जब हम गणित या मैथमेटिक्स शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में जटिल फॉर्मूले, नंबर्स और कुछ गंभीर चेहरे सामने आते हैं, लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी शख्सियत के नाम दर्ज हैं जिन्होंने गणित को एक खूबसूरत कला की तरह देखा। जी हाँ, आज 15 जुलाई है और आज ही के दिन साल 2017 में दुनिया ने अपनी सबसे प्रतिभाशाली और जादुई गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी को हमेशा के लिए खो दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए सखियों याद करते हैं उनकी इस अद्भुत यात्रा को। ईरान के तेहरान में जन्मी मरियम बचपन में गणितज्ञ नहीं बल्कि लेखिका बनना चाहती थी। उन्हें कहानियां पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था, लेकिन जब उन्होंने नंबर्स और ज्योमेट्री के पैटर्न को समझा तो उन्हें लगा कि गणित भी तो एक अनकही कहानी जैसी है जिसे सुलझाना बाकी है। और फिर क्या था, उनकी इस लगन ने उन्हें इतिहास रचने पर मजबूर कर दिया। साल 2014 में मरियम मिर्जा खानी को गणित की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी फील्ड्स मेडल दिया गया। आपको जानकर गर्व होगा कि यह सम्मान पाने वाली वे दुनिया की पहली महिला थी। उन्होंने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जेंडर या सीमाओं की मोहताज नहीं होती। मरियम गणित की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए फर्श पर सफ़ेद कागज़ की बड़ी शीट्स फैला देती थी और घंटों उस पर रेखाएं और चित्र बनाती रहती थी। उनकी छोटी बेटी उन्हें अक्सर देखकर कहती थी कि मम्मा फिर से पेंटिंग कर रही है। सच में उनके लिए गणित एक कैनवास था और वो उसकी कलाकार। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए सिर्फ 40 साल की उम्र में उन्होंने

दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी वो दुनिया भर की करोड़ों लड़कियों और युवाओं को ये हौसला दे गई कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज उनके इस जज्बे को हमारा सलाम।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: सिखियों, अब हम बात कर रहे हैं इतिहास के एक ऐसे चेहरे की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने अस्पताल के कमरों से बाहर निकलकर गांव की गरीब महिलाओं के आंसुओं को पोंछा और उन्हें जीने की नई राह दिखाई। जी हां सखियों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी की। साल 1944 में उन्होंने पुणे के एक अस्पताल की जिम्मेदारी संभाली थी। सखियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि तब उस अस्पताल में सिर्फ 40 बेड थे, लेकिन बानो जी की लगन और दिन रात की मेहनत से वो छोटा सा अस्पताल आज 500 से भी ज़्यादा बेड का एक बड़ा मेडिकल सेंटर बन चुका है। सखियों, डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने देखा कि गांवों में गरीब माताएं और बच्चे सही इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ देते हैं। उन्होंने ठाना कि वे खुद इलाज लेकर गांवों तक जाएगी। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की और गांव की ही महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में तैयार किया। उन्होंने महिलाओं को परिवार नियोजन, साफ सफाई और बच्चों की सही देखभाल के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी ने हमेशा माना कि जब तक देश की महिलाएं शिक्षित और स्वस्थ नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनके इन्हीं बेहतरीन कामों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। 15 जुलाई 2004 को डॉक्टर बानो जहांगीर कोया जी इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी सेवा की खुशबू आज भी लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बनकर जिंदा है। सच्चे मायनों में वो एक ऐसी डॉक्टर थी जिन्होंने केवल बीमारी का नहीं बल्कि समाज की गरीबी और अज्ञानता का भी इलाज किया था। डॉक्टर बानो कोया जी के इस महान जीवन को हमारा शत शत नमन। सखियों, जुलाई का महीना चल रहा है और रिमझिम फुहारों के साथ मानसून ने भी दस्तक दे दी है। इस बदलते मौसम में बाहर के चाट पकौड़े खाने का मन तो हम सबका करता है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार बरसात में हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसीलिए सखियों इस मौसम में भारी, तेलिए और खुले में रखे भोजन से दूरी बना ले। हरी पत्तेदार सब्जियों में इस समय कीड़े होने का डर रहता है, इसलिए उन्हें अच्छी तरह धोकर ही खाएं। मानसून में अपनी डाइट में हल्की और सुपाच्य चीजें शामिल करें, जैसे कि लौकी, तोरई, कद्दू और सूप का सेवन बढ़ाएं। भोजन में अदरक, लहसुन, हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएगा। पानी को हमेशा उबालकर ही पिएं। तो सखियों, इस सुहावने मौसम का आनंद लें, गरम गरम भोजन खाएं और बीमारियों से दूर रहें।

0: क्या? ए क्या बोलती तू?
1: सखियों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा भी अब कार्यक्रम से अनुमति लेने का समय हो चला है, तो दीजिए आज्ञा अपनी रेडियो सखी मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 11 बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

बन्ने खां भोपाली मुन्ने मियां बधाई बनो

तू पढ़ना हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना मोहब्बत।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में एक कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

मेड इन इंडिया, ये था एल्बम का नाम और अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बिटू का संगीत था। इस वक्त आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

0: जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

0: काम किसी से कम नहीं। ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।
1: रंग तरंग।
2: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय

0: रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है, एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे आशी की फिल्म से। समीर ने इसे लिखा और नदीम श्रवण का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जो जिंदगी से जुड़े हैं और जीवन से जुड़े हैं, ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल फेरिस्त में ये अगला गीत।

भूपिंदर और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूरियां फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
3: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी।

0: काला पत्थर, इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।